0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, वर्तमान दुनिया की स्थिति में हम लोगों को अपनी चिंता में खोया और डूबा पाते हैं। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वह एक दूसरे के पास जाकर उसके दिल का हाल और कुशल क्षेम पूछ सके या स्वयं अपने दिल की बोझ को बतलाते हुए अपने को हल्का करे। लेकिन हमारे समय की ऐसी परिस्थिति में भी कुछ एक हैं जो अपने आप से बाहर जाते हुए उन व्यक्तियों के लिए अपना समय देते हैं जिन्हें वे ईश भक्त और धर्मी सज्जनों के रूप में पाते हैं। विश्वास, प्रेम और उदारता में उनका ऐसा करना उनके लिए ईश्वरीय आशीष और कृपाओं का स्रोत साबित होता है। श्रोताओं, वर्ष के 13वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों का संदर्भ कुछ ऐसा ही है। हम प्रभु वचनों में स्वागत किए जाने और दूसरों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने से हमारे लिए होने वाले चमत्कार की बात सुनते हैं। आइए हम प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में पूछें कि हम दूसरों के लिए कितने खुले रहते हैं। हम अपने जीवन में व्यक्तियों को, चाहे वे हमारे परिचित या अपरिचित ही क्यों ना हो, उनका स्वागत किस रूप में करते हैं। अतिथि सत्कार में मिलने वाले ईश्वरीय आशीष को क्या हमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हम में उदारता के भाव जागृत करे जिससे हम अपने हृदय को दूसरों के लिए खोल सकें, हम दूसरों के लिए अपने को दे सकें जिससे हम अपने को ईश्वरीय उपहारों के हकदार बना सकें। श्रोताओं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अतिथि देवो भव, मेहमान ईश्वर के प्रतिरूप होने की बात व्यक्त करता है। इसराइल के शूनेम की एक धनी महिला ने नबी एलियस का स्वागत किया, उसके लिए खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की, और उसके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए नबी ने उसे ईश्वरीय आशीष पुत्र रतन से भर दिया, यद्यपि उसका पति अपने में बूढ़ा हो चला था। यह हमारे लिए उस कथन को भी सत्यापित करता है कि जो मुक्त हस्त देता है, जो उदारता में अपने को देता है, वह ईश्वरीय कृपाओं का हकदार होता है। श्रोताओं, यह हम सबों को अपने को देने के भाव और दूसरों के प्रति अपने मनोभावों की परख करने का आह्वान करता है। शूनेम की धनी नारी को किसी ने यह निर्देश नहीं दिया कि वह नबी एलियस की देखरेख और सेवा करे, बल्कि उसने अपनी ओर से पहल करते हुए उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस धनी नारी के द्वारा किया गया निस्वार्थ सेवा उसके परिवार के लिए ईश्वरीय आशीष का कारण बनता है। श्रोताओं, हम में से हर कोई अपने जीवन में ईश्वर की आशीष पाने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह अपने में तब पूरी होती है जब हम अपने को प्रेम में ईश्वर के लिए उदारतापूर्ण हृदय से देते हैं। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए देने के भाव को और अधिक गहराई से देखने और समझने को मदद करता है। हमें सर्वप्रथम ईश्वर से सारी चीजें उपहार में मिली हैं। इस संदर्भ में संत पौलुस हमें मिले बपतिस्मा के दान का जिक्र करते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी मृत्यु में सहभागी करते और नए जीवन की सौगात प्रदान करते हैं। ईश्वर में हमें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि पुनरुत्थान का नया जीवन मिला है, जो हमें उनके संग दिव्य आनंद के भागीदार बनाता है। अतः हम सभी अपने जीवन की इस नवीनता को दूसरों के संग साझा करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह हमें अपने व्यक्तिगत परिधि से बाहर निकलकर अपने को सारी दुनिया हेतु खुला रखने का निमंत्रण देता है। श्रोताओं, अपने माता पिता भाई बहनों को ईश्वर से अधिक प्रेम करने वालों को मुक्तिदाता यीशु अपने अनुसरण के योग्य नहीं कहते हैं। यह निस्संदेह हमें अपने परिवार के प्रिय जनों से घृणा करने को नहीं कहता है। यीशु के इन वचनों पर चिंतन करने के माध्यम हम अपने में यही पाते हैं कि अपने प्रिय जनों से अधिक लगाव हमारे लिए ईश्वर के कार्य को निस्वार्थ और उदारता में करने हेतु बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। समर्पित जीवन के लोग धर्म संघी और धर्म बंधुओं के रूप में परिवारों के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव हमारे प्रेरित कार्यों को प्रभावित करते हैं। हम ईश प्रजा की सेवा करने के बदले परिवार के सेवक सेविकाएं बनकर रह जाते हैं। इसका परिणाम हमारे लिए यह होता है कि छोटी छोटी पारिवारिक चिंताएं और परेशानियां हमें आहत और परेशान करती हैं। कितने ही धर्म संघी और धर्म बहने ऐसे हैं जो शायद हर छोटी चीज घटनाओं और कार्यक्रमों के लिए दौड़ दौड़ कर अपने घरों को जाते हैं, मानो उनके बिना कार्य पूरे ही ना होते हों। यह अशक्ति और परिवारों से अत्यधिक लगाव धर्म संघ और धर्म समाज की प्रेरिताई को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसके लिए समर्पित लोगों के बारे में टीका टिप्पणी भी की जाती है। श्रोताओं, आज का प्रभु वचन हमें अपने दैनिक जीवन के क्रूस को वहन करने का आह्वान देता है। यह हमें आत्म त्याग करने को कहता है और यह हमारे लिए तब होता है जब हम उन चीजों का परित्याग करते हैं जो हमें अच्छी और प्यारी लगती हैं, जिनसे हमारा अत्यधिक लगाव है। जब हम अपने व्रतों के अनुसार अनुशासन में जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, वे चीजें जो हमारे लिए लत के समान हैं, अपनी सजगता में हम उन्हें कम करने का प्रयास करते तो हम आत्म त्याग करते हुए अपने क्रूस को वहन करने के योग्य होते हैं। यह हमें अपने को अपने तक सीमित रहने को नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए खुला रहने के योग्य बनाता है, जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में आते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें उदार हृदय होने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने को सबों के लिए खुला रख सकें जो हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की चाह लिए आते हैं।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 29 जून को कलीसिया के संरक्षक प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में सुबह 9:30 बजे समारोही ख्रिस्ता की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही पालिया को आशीष देते हुए उससे 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को प्रदान करेंगे। पोप लियो से पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्म अध्यक्षों में से 2 भारत के हैं। मदुराई के महाधर्म अध्यक्ष अंतोनी सामी साबरीमुत्तु और कलकत्ता के महाधर्म अध्यक्ष एलियस फ्रांक। समारोह में पोप लियो पालिया पर आशीष देंगे और पालिया ग्रहण करने से पहले महाधर्म अध्यक्ष प्रेरित संत पेत्रुस रोम की पौत्र प्रेरिती कलीसिया और कार्तिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी पोप की निष्ठा की शपथ लेंगे। यह एक वार्षिक समारोह है जब वर्ष के दौरान नियुक्त महाधर्म अध्यक्षों को पोप की ओर से पालिया प्रदान की जाती है। वैटिकन के पावर सिस्टम सभागार में असाधारण कंसिस्ट्री का दूसरा सत्र शांति पर केंद्रित था, जिसमें शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। कई दलों ने न्यायपूर्ण युद्ध धर्म सिद्धांत के तर्क में आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई और इसके बजाय पेशेवर आत्मरक्षा के अधिकार की बात की। 26 जून को पावर सिस्टम सभागार में आरंभ हुए असाधारण कंसिस्ट्री के दोपहर के सत्र की शुरुआत वेनेजुएला के दर्दनाक हालात और हाल में आए भूकंप के कई पीड़ितों के लिए प्रार्थना के साथ हुए। सत्ता की संस्कृति एवं प्यार की सभ्यता विषय वस्तु के इस सत्र में विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास के अध्याय 5 पर चिंतन किया गया। इसकी शुरुआत एक सामूहिक प्रार्थना से हुई और इसका संचालन कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने की, जिन्होंने विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस को शुरुआती भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें सत्र की शुरुआत में शामिल हुए और बाद में आम सभा के लिए वापस आए। सभा में 11 दलों ने रिपोर्ट पेश की, पहले समूह से 8 और दूसरे समूह से 3। वैटिकन प्रेस कार्यालय से जारी एक बयान अनुसार सभी ने आज के समय की चुनौतियों पर बात की और सत्ता की संस्कृति की अमानवीय शक्ति, इसकी वार्षिक पहुंच, शक्तिशाली लोगों के तर्क के हिसाब से चलने और युद्ध एवं ध्रुवीकरण को सामान्य बनाने के प्रलोभन पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि पर प्रतिभागियों ने शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों पर केंद्रित भाषा के जरिए कलीसिया के अंदर ही एक भरोसेमंद गवाही देने के महत्व पर भी बल दिया, अर्थात सुनने, माफ करने, मेल मिलाप, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और ठोस संकेत पर। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा झगड़ों में फंसे लोगों के दिलों को छू सकती है, युद्ध से हुए जख्मों को भर सकती है और कलीसिया के अंदर एकता की तलाश को बढ़ावा दे सकती है। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कलीसिया के अंदर एकता होना उसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। ऐसे समय में जब उदासीनता का वैश्वीकरण लोगों को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बना रहा है, हर व्यक्ति को शांति लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया।
1: विश्व भर से आए कार्डिनल 26 और 27 जून तक वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में चल रहे कार्डिनल मंडल की असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग ले रहे हैं। कंसिस्ट्री शुक्रवार 26 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में पवित्र मिसा के साथ शुरू हुई। इसके बाद उद्घाटन सत्र के लिए कार्डिनल संत पापा पॉल सिस्टम सभागार गए। पवित्र आत्मा के आह्वान के बाद कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे के भाषण और संत पापा के शुरुआती भाषण से सत्र शुरू किया गया। संत पापा लियो ने कार्डिनलों को हाल के महीनों में सहभागिता के जरिए कलीसिया में मेल जोल के अपने आमंत्रण को याद दिलाया, जिसमें हर सदस्य अपने करिश्मे और सेवा के अनुसार अपने मिशन में सहयोग करेगा। फिर उन्होंने उन 4 विषय पर विचार किया जिन पर कार्डिनल इन दो दिनों में फोकस करेंगे। सबसे पहले वे उस दुनिया के बारे में सोचेंगे जिसमें कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यह स्थिति जागरूकता उन्हें यीशु को पहचानने में मदद करेगी जो दुनिया की सड़कों पर चलते हैं और इतिहास में हमसे आगे चलते हैं। दूसरा, कार्डिनल शक्ति की संस्कृति और प्यार की सभ्यता के मतलब की जांच करेंगे। संत पापा ने कार्डिनलों को अपने स्थानीय कलीसियाओं को समझने के लिए विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास को एक चाबी के तौर पर लेने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे सत्र में वे इस बात की जांच करेंगे कि कलीसिया इंसानियत की भलाई के लिए क्या योगदान दे सकती है। चौथे सत्र में कार्डिनल सिनोडालिटी पर सिनोड के लगातार लागू होने पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतिम सत्र पिछले तीन बैठकों के विचारों को सिनोडालिटी के नजरिए से एक नजरिया, एक खुलापन और समझने की इच्छा के तौर पर एकत्रित करेगा। कलीसिया की अंदरूनी जिंदगी पर ध्यान देने के साथ साथ संत पापा ने कार्डिनलों को दुनिया को देखने और एक ही सवाल पूछने के लिए बुलाया। आज हम अपनी कलीसियाओं को ज्यादा ईमानदारी, आजादी और भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग की एक नई डॉक्यूमेंट्री लियो इन रोम 1 जुलाई को वाटिकन न्यूज के प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाली है, जिसमें संत पापा लियो 14वें के चुनाव से पहले रोम में बिताए गए सालों के बारे में बताया गया है। उधर 25 जून को न्यूयॉर्क में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, वर्तमान दुनिया की स्थिति में हम लोगों को अपनी चिंता में खोया और डूबा पाते हैं। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वह एक दूसरे के पास जाकर उसके दिल का हाल और कुशल क्षेम पूछ सके या स्वयं अपने दिल की बोझ को बतलाते हुए अपने को हल्का करे। लेकिन हमारे समय की ऐसी परिस्थिति में भी कुछ एक हैं जो अपने आप से बाहर जाते हुए उन व्यक्तियों के लिए अपना समय देते हैं जिन्हें वे ईश भक्त और धर्मी सज्जनों के रूप में पाते हैं। विश्वास, प्रेम और उदारता में उनका ऐसा करना उनके लिए ईश्वरीय आशीष और कृपाओं का स्रोत साबित होता है। श्रोताओं, वर्ष के 13वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों का संदर्भ कुछ ऐसा ही है। हम प्रभु वचनों में स्वागत किए जाने और दूसरों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने से हमारे लिए होने वाले चमत्कार की बात सुनते हैं। आइए हम प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में पूछें कि हम दूसरों के लिए कितने खुले रहते हैं। हम अपने जीवन में व्यक्तियों को, चाहे वे हमारे परिचित या अपरिचित ही क्यों ना हो, उनका स्वागत किस रूप में करते हैं। अतिथि सत्कार में मिलने वाले ईश्वरीय आशीष को क्या हमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें उदारता के भाव जागृत करे जिससे हम अपने हृदय को दूसरों के लिए खोल सकें, हम दूसरों के लिए अपने को दे सकें जिससे हम अपने को ईश्वरीय उपहारों के हकदार बना सकें। श्रोताओं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अतिथि देवो भव, मेहमान ईश्वर के प्रतिरूप होने की बात व्यक्त करता है। इसराइल के शूनेम की एक धनी महिला ने नबी एलियस का स्वागत किया, उसके लिए खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की, और उसके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए नबी ने उसे ईश्वरीय आशीष पुत्र रतन से भर दिया, यद्यपि उसका पति अपने में बूढ़ा हो चला था। यह हमारे लिए उस कथन को भी सत्यापित करता है कि जो मुक्त हस्त देता है, जो उदारता में अपने को देता है, वह ईश्वरीय कृपाओं का हकदार होता है। श्रोताओं, यह हम सबों को अपने को देने के भाव और दूसरों के प्रति अपने मनोभावों की परख करने का आह्वान करता है। शूनेम की धनी नारी को किसी ने यह निर्देश नहीं दिया कि वह नबी एलियस की देखरेख और सेवा करे, बल्कि उसने अपनी ओर से पहल करते हुए उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस धनी नारी के द्वारा किया गया निस्वार्थ सेवा उसके परिवार के लिए ईश्वरीय आशीष का कारण बनता है। श्रोताओं, हम में से हर कोई अपने जीवन में ईश्वर की आशीष पाने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह अपने में तब पूरी होती है जब हम अपने को प्रेम में ईश्वर के लिए उदारतापूर्ण हृदय से देते हैं। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए देने के भाव को और अधिक गहराई से देखने और समझने को मदद करता है। हमें सर्वप्रथम ईश्वर से सारी चीजें उपहार में मिली हैं। इस संदर्भ में संत पौलुस हमें मिले बपतिस्मा के दान का जिक्र करते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी मृत्यु में सहभागी करते और नए जीवन की सौगात प्रदान करते हैं। ईश्वर में हमें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि पुनरुत्थान का नया जीवन मिला है, जो हमें उनके संग दिव्य आनंद के भागीदार बनाता है। अतः हम सभी अपने जीवन की इस नवीनता को दूसरों के संग साझा करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह हमें अपने व्यक्तिगत परिधि से बाहर निकलकर अपने को सारी दुनिया हेतु खुला रखने का निमंत्रण देता है। श्रोताओं, अपने माता पिता भाई बहनों को ईश्वर से अधिक प्रेम करने वालों को मुक्तिदाता यीशु अपने अनुसरण के योग्य नहीं कहते हैं। यह निस्संदेह हमें अपने परिवार के प्रिय जनों से घृणा करने को नहीं कहता है। यीशु के इन वचनों पर चिंतन करने के माध्यम हम अपने में यही पाते हैं कि अपने प्रिय जनों से अधिक लगाव हमारे लिए ईश्वर के कार्य को निस्वार्थ और उदारता में करने हेतु बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। समर्पित जीवन के लोग धर्म संघी और धर्म बंधुओं के रूप में परिवारों के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव हमारे प्रेरित कार्यों को प्रभावित करते हैं। हम ईश प्रजा की सेवा करने के बदले परिवार के सेवक सेविकाएं बनकर रह जाते हैं। इसका परिणाम हमारे लिए यह होता है कि छोटी छोटी पारिवारिक चिंताएं और परेशानियां हमें आहत और परेशान करती हैं। कितने ही धर्म संघी और धर्म बहने ऐसे हैं जो शायद हर छोटी चीज घटनाओं और कार्यक्रमों के लिए दौड़ दौड़ कर अपने घरों को जाते हैं, मानो उनके बिना कार्य पूरे ही ना होते हों। यह अशक्ति और परिवारों से अत्यधिक लगाव धर्म संघ और धर्म समाज की प्रेरिताई को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसके लिए समर्पित लोगों के बारे में टीका टिप्पणी भी की जाती है। श्रोताओं, आज का प्रभु वचन हमें अपने दैनिक जीवन के क्रूस को वहन करने का आह्वान देता है। यह हमें आत्म त्याग करने को कहता है और यह हमारे लिए तब होता है जब हम उन चीजों का परित्याग करते हैं जो हमें अच्छी और प्यारी लगती हैं, जिनसे हमारा अत्यधिक लगाव है। जब हम अपने व्रतों के अनुसार अनुशासन में जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, वे चीजें जो हमारे लिए लत के समान हैं, अपनी सजगता में हम उन्हें कम करने का प्रयास करते तो हम आत्म त्याग करते हुए अपने क्रूस को वहन करने के योग्य होते हैं। यह हमें अपने को अपने तक सीमित रहने को नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए खुला रहने के योग्य बनाता है, जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में आते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें उदार हृदय होने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने को सबों के लिए खुला रख सकें जो हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की चाह लिए आते हैं।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 29 जून को कलीसिया के संरक्षक प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर में सुबह 9:30 बजे समारोह ख्रिस्ता की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही पालिया को आशीष देते हुए उससे 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को प्रदान करेंगे। पोप लियो से पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्म अध्यक्षों में से 2 भारत के हैं। मदुराई के महाधर्म अध्यक्ष अंतोनी सामी साबरी मुत्तु और कलकत्ता के महाधर्म अध्यक्ष एलियस फ्रांक। समारोह में पोप लियो पालिया पर आशीष देंगे और पालिया ग्रहण करने से पहले महाधर्म अध्यक्ष प्रेरित संत पेत्रुस रोम की पौत्र प्रेरिती कलीसिया और कार्तिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी पोप की निष्ठा की शपथ लेंगे। यह एक वार्षिक समारोह है जब वर्ष के दौरान नियुक्त महाधर्म अध्यक्षों को पोप की ओर से पालिया प्रदान की जाती है। वैटिकन के पावर सिस्टम सभागार में असाधारण कंसिस्ट्री का दूसरा सत्र शांति पर केंद्रित था, जिसमें शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। कई दलों ने न्यायपूर्ण युद्ध धर्म सिद्धांत के तर्क में आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई और इसके बजाय पेशेवर आत्मरक्षा के अधिकार की बात की। 26 जून को पावर सिस्टम सभागार में आरंभ हुए असाधारण कंसिस्ट्री के दोपहर के सत्र की शुरुआत वेनेजुएला के दर्दनाक हालात और हाल में आए भूकंप के कई पीड़ितों के लिए प्रार्थना के साथ हुई। सत्ता की संस्कृति एवं प्यार की सभ्यता विषय वस्तु के इस सत्र में विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के अध्याय 5 पर चिंतन किया गया। इसकी शुरुआत एक सामूहिक प्रार्थना से हुई और इसका संचालन कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने की, जिन्होंने विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस को शुरुआती भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें सत्र की शुरुआत में शामिल हुए और बाद में आम सभा के लिए वापस आए। सभा में 11 दलों ने रिपोर्ट पेश की, पहले समूह से 8 और दूसरे समूह से 3। वैटिकन प्रेस कार्यालय से जारी एक बयान अनुसार सभी ने आज के समय की चुनौतियों पर बात की और सत्ता की संस्कृति की अमानवीय शक्ति, इसकी वार्षिक पहुंच, शक्तिशाली लोगों के तर्क के हिसाब से चलने और युद्ध एवं ध्रुवीकरण को सामान्य बनाने के प्रलोभन पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि पर प्रतिभागियों ने शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों पर केंद्रित भाषा के जरिए कलीसिया के अंदर ही एक भरोसेमंद गवाही देने के महत्व पर भी बल दिया, अर्थात सुनने, माफ करने, मेल मिलाप, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और ठोस संकेत पर। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा झगड़ों में फंसे लोगों के दिलों को छू सकती है, युद्ध से हुए जख्मों को भर सकती है और कलीसिया के अंदर एकता की तलाश को बढ़ावा दे सकती है। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कलीसिया के अंदर एकता होना उसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। ऐसे समय में जब उदासीनता का वैश्वीकरण लोगों को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बना रहा है, हर व्यक्ति को शांति लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया।
1: विश्व भर से आए कार्डिनल 26 और 27 जून तक वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में चल रहे कार्डिनल मंडल की असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग ले रहे हैं। कंसिस्ट्री शुक्रवार 26 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा के साथ शुरू हुई। इसके बाद उद्घाटन सत्र के लिए कार्डिनल संत पापा पॉल षष्ठम सभागार गए। पवित्र आत्मा के आह्वान के बाद कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे के भाषण और संत पापा के शुरुआती भाषण से सत्र शुरू किया गया। संत पापा लियो ने कार्डिनलों को हाल के महीनों में सहभागिता के जरिए कलीसिया में मेलजोल के अपने आमंत्रण को याद दिलाया, जिसमें हर सदस्य अपने करिश्मे और सेवा के अनुसार अपने मिशन में सहयोग करेगा। फिर उन्होंने उन 4 विषय पर विचार किया जिन पर कार्डिनल इन दो दिनों में फोकस करेंगे। सबसे पहले वे उस दुनिया के बारे में सोचेंगे जिसमें कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यह स्थिति जागरूकता उन्हें यीशु को पहचानने में मदद करेगी जो दुनिया की सड़कों पर चलते हैं और इतिहास में हमसे आगे चलते हैं। दूसरा, कार्डिनल शक्ति की संस्कृति और प्यार की सभ्यता के मतलब की जांच करेंगे। संत पापा ने कार्डिनलों को अपने स्थानीय कलीसियाओं को समझने के लिए विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास को एक चाबी के तौर पर लेने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे सत्र में वे इस बात की जांच करेंगे कि कलीसिया इंसानियत की भलाई के लिए क्या योगदान दे सकती है। चौथे सत्र में कार्डिनल सिनोडालिटी पर सिनोड के लगातार लागू होने पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतिम सत्र पिछले 3 बैठकों के विचारों को सिनोडालिटी के नजरिए से एक नजरिया, एक खुलापन और समझने की इच्छा के तौर पर एकत्रित करेगा। कलीसिया की अंदरूनी जिंदगी पर ध्यान देने के साथ साथ संत पापा ने कार्डिनलों को दुनिया को देखने और एक ही सवाल पूछने के लिए बुलाया। आज हम अपनी कलीसियाओं को ज्यादा ईमानदारी, आजादी और भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग की एक नई डॉक्यूमेंट्री लियो इन रोम 1 जुलाई को वाटिकन न्यूज के प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाली है, जिसमें संत पापा लियो 14वें के चुनाव से पहले रोम में बिताए गए सालों के बारे में बताया गया है। उधर 25 जून को न्यूयॉर्क में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद के खुले विवाद के लिए एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर के कई देश लड़ाई झगड़ों से प्रभावित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों और युद्ध के दूसरे कमजोर पीड़ितों की सुरक्षा के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाने की जरूरत है। उनकी तकलीफ पर प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और हर इंसान की ईश्वर की दी हुई इंसानी गरिमा का सम्मान दोनों का एक सूचक होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
0: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ,

नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे।

0: अरे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संत प्रकरण विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन में संत प्रकरण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कैथोलिक कलीसिया में संत घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। संत घोषणा की प्रक्रिया चार चरणों में होती है। विभाग उम्मीदवार की शहादत या विरोचित सद्गुणों की जांच करने में उनसे जुड़े धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्षों की मदद करता है। साथ ही उम्मीदवार के विश्वासी जीवन और उसके माध्यम से हुए चमत्कारों की जांच करता है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग के प्रीफेक्ट पोप के समक्ष आज्ञाप्ति पेश करते हैं, ताकि वे उसे सभी विश्वासियों द्वारा सम्मान दिए जाने के लिए कलीसिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। संत प्रकरण विभाग का काम है संत घोषणा के लिए उम्मीदवारों के जीवन की जांच करना, उनके स्वभाव में सुसमाचार की विशेषताओं को खोजना, ताकि हर ख्रिस्ती उन्हें भरोसेमंद और सबसे बढ़कर अनुकरणीय गवाह के रूप में देख सकें। किसी संत घोषणा के पीछे एक वफादार सामूहिक कार्य होता है जो कभी कभी दशकों तक चला जाता है। वर्तमान में संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट हैं कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो, जबकि सचिव महाधर्माध्यक्ष फाबियो फाबेने हैं। सन 1969 में संत पापा पॉल छठवें ने प्रेरित संविधान साक्रारीतुम कांग्रीगासियो के साथ दिव्य उपासना और संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना की थी और उनके बीच पौत्र संस्कारों के धम्म संघ के कामों को बांटा था। 1983 के प्रेरित संविधान दिवीनुस पेरफेक्सियोने मजिस्टेर के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषणा के कारणों की प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया और धम्म संघ की संरचना में बदलाव लाया, जिसे एक पर्यवेक्षक दिया गया जो ईश सेवकों की संत घोषणा की देख रेख करे। इसके बाद 1988 के प्रेरित संविधान पास्टर पोनुस के साथ इसका नाम बदलकर संतों के मामलों के लिए स्थापित धम्म संघ कर दिया गया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ पोप फ्रांसिस ने इसका नाम संत प्रकरण विभाग कर दिया और 2025 के जुबली के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने विभाग के अंदर नए शहीदों विश्वास के साक्ष्यों के आयोग का गठन किया, ताकि उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जा सके जिनमें दूसरे ख्रिस्त समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ख्रिस्त को मानने और उनके सुसमाचार की गवाही देने के लिए अपना खून बहाया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में बताया गया है, यह विभाग ईश सेवक की धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया की देख रेख करने, शहादत या वीरतापूर्ण सद्गुणों की जाँच में विशप की मदद करने या किसी कार्तिक विश्वासी के जीवन और चमत्कारों की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो ईश सेवक को चुना जाता है, जिसके लिए एक सच्चे विस्तृत और पक्की पौत्रता की जरूरत होती है, यानी यह आम राय कि उसका जीवन सरल ख्रिस्त सद्गुणों से भरपूर और ख्रिस्त समुदाय के लिए फायदेमंद था। 1983 में लाए गए संतों के मामलों के नए नियम ने धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया के समय को काफी कम कर दिया है। हालांकि संत घोषणा की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है। अगर ये मामला सकारात्मक हो तो मामला विभाग के सदस्यों, कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों के आम सत्र में जाता है। आखिरी फैसला पोप का होता है, जिनकी मंजूरी से प्रीफेक्ट अलग अलग मामलों को सौंपता है। संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना के बाद से इन 56 सालों के आध्यात्मिक एवं प्रेरित संतुलन में 2020 तक 3,300 धन्य घोषणा और 1,479 संत घोषणाएं हुए हैं। हर साल आमतौर पर हर महीने दो आम सत्र होते हैं और हर एक में तीन या चार मामलों की जांच होती है। इस तरह एक साल में 70 से 80 मामले निपटाए जाते हैं। ईश प्रजा के बीच पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए लोकप्रियता के कारण धम्म प्रांत में जांच शुरू होती है। रोम लाए जाने के बाद एक पर्यवेक्षक को पोस्टुलेटर का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि वह धम्म प्रांत में संग्रहित सबूतों का सारांश तैयार करे, जीवन की कहानी लिखे और ईश सेवक की पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए उनकी तुलनात्मक ख्याति के साथ साथ शहादत का वर्णन करे। इस स्थिति का अध्ययन ईश शास्त्रों के एक दल द्वारा किया जाता है और यदि पुराना मामला हो जिसमें उम्मीदवार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है तो इतिहासकारों के एक कमीशन द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर उनकी राय सही होती है, फाइल को विभाग के कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों द्वारा आगे की जांच के लिए जमा किया जाता है।
अगर मंजूरी मिल जाती है तो पोप ख्रिस्त सद्गुणों या शहादत अथवा ईश सेवक के जीवन के समर्पण पर आज्ञाप्ति जारी करने की मंजूरी देते हैं। इस तरह वे आदरणीय बन जाते हैं। धन्य घोषणा संत घोषित करने की दिशा में बीज का चरण है। अगर उम्मीदवार को शहीद घोषित किया जाता है तो वे तुरंत धन्य हो जाते हैं, अन्यथा उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना से हुए चमत्कार को मान्यता मिलनी चाहिए। चमत्कार पर ईश शास्त्र परामर्श के बाद पोप संबंधित आज्ञाप्ति को मंजूरी देते हैं। धन्य को संत घोषित करने के लिए उन्हें दूसरे चमत्कार में असरदार प्रार्थना का श्रेय मिलना चाहिए। धन्य घोषणा और संत घोषणा एक कार्तिक विश्वासी से जुड़ा है जिसने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद पौत्रता, शहादत या अपने जीवन के समर्पण के द्वारा प्रसिद्धि पाई हो। श्रोताओं, रवि पारे कार्यक्रम के अंतर्गत संत प्रकरण विभाग पर संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका पलटती बाजी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने ज्ञान, धन, संपदा, रंग रूप और सुंदरता पर बहुत ही घमंड होता है। अपने आगे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। शादी के लिए लड़की देखने गए तो लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल करना पसंद कर ली। यही बात लड़की के लिए भी है। यदि शादी न करना चाहे तो लड़के में नुक्स निकाल कर खाली हाथ लड़के को वापस भेज दिया। कुछ लोगों को दूसरों का उपहास करना और उनको नीचा दिखाने में आनंद आता है। यदि आप भी लोगों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं तो इस बुरी आदत को बदल लें, क्योंकि जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। बाजी पलटने में समय नहीं लगता। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका पलटती बाजी।
1: और क्या कर रही है मेरी बहना?
2: और क्या करना है पवन भैया, कॉलेज खुलने में अभी 15 दिन और हैं, सो टाइम पास कर रही हूँ।
1: तूने इकोनॉमिक्स में एमए तो कर ही लिया है, अब कॉलेज में किस विषय में एडमिशन लेना चाहती हो तुम?
2: अब मैं फिलॉसफी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और फिलॉसफी में एमए करना चाहती हूँ।
1: लो बताओ, तुम आगे बढ़ना और पढ़ना भी चाहती हो तो किस विषय में? अरे जमाने के साथ चलो प्रीति, जमाने के साथ।
2: क्यों, फिलॉसफी में आगे बढ़ने में क्या बुराई है? जीवन और संसार के दर्शन के विषय में अपना अपना ज्ञान बढ़ाने में आखिर बुराई ही क्या है?
1: बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही बढ़ेगा और वो ज्ञान तुम्हारे किस काम आएगा प्रीति?
2: क्यों भैया, क्यों किसी काम नहीं आएगा? जीवन में दर्शन का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है।
1: देखो, अगर तुम मेरी बात सुनो तो कंप्यूटर वगैरह सीख लो और कुछ सोचो, तुम्हारे काम आएगा। ये दर्शन शास्त्र वगैरह जैसे सब्जेक्ट तो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं।
2: क्या पवन भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला ज्ञान पाने और ज्ञान बढ़ाने का भी कोई विषय आउट ऑफ फैशन होता है क्या?
1: लेकिन कुछ नया करने और नया सीखने में आखिर बुराई ही क्या है प्रीति? अच्छा प्रीति, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ये तुम्हारे मनपसंद विषय पढ़कर आगे क्या करना चाहती हो?
2: देखो भैया, आपको एक बात तो मैं साफ बता दूं कि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करने वाली हूँ।
1: फिर क्या करोगी तुम?
2: इतना तो तय है कि मैं नौकरी के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी।
1: तो मतलब ये कि नौकरी करने के बजाय तुम शादी करना अधिक पसंद करोगी?
2: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
1: अरे जब तुम्हें शादी ही करना है तो फिर ये आगे पढ़ने का झंझट क्यों?
2: तो आगे और पढ़ने में बुराई भी क्या है?
1: मेरा मतलब है कि जब तुम्हें नौकरी वगैरह नहीं करना है तो सीधे अपने किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लो।
2: समय आने पर वो भी कर लूंगी भैया।
1: मगर मैंने तो अभी तक सिर्फ यही देखा है प्रीति कि जब भी कोई लड़का तुम्हें देखने आता है तो सारी रस्म पूरी होने के बाद पता चलता है कि तुमने लड़के को तो नापसंद कर दिया है।
2: पवन भैया, अब अगर लड़का नापसंद होगा तो नापसंद ही तो किया जाएगा ना।
3: बेटी, अगर इस दुनिया में तुम लोगों में कमी ढूंढने जाओगी तो तुम्हें सभी लोगों में कोई ना कोई तो कमी मिल ही जाएगी।
2: अब कमी है या होगी तो मिलेगी ही पापा।
1: सुना पापा आपने, आपकी लड़की का क्या कहना है?
3: देखो बेटी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी या गलती ना हो।
2: कोई तो ऐसा होगा ना पापा?
3: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, पूरा हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो।
1: पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर तुम दूसरों की गलतियां ढूंढती रहती हो। क्या तुम में कोई गलती नहीं है? क्या तुम एकदम परफेक्ट हो?
3: पवन बिल्कुल सही कह रहा है बेटी, हमें दूसरों में कमी या गलती देखने की बजाय पहले अपने आप में ही हमें इन अवगुणों को खोजना चाहिए, उससे दूर कर फिर औरों में हमें कमी ढूंढना चाहिए।
2: मगर शादी करके मुझे जीवन भर उसके साथ रहना है, तो क्या मैं अपनी पसंद का ध्यान भी ना रखूं?
3: वो भी तुम्हें एक सीमा तक ही रखना चाहिए बेटी, और फिर आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करती? मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो और उसमें मेरी मदद करो बेटी।
4: प्रीति आओ आओ।
2: और क्या कर रही हो?
4: अरे ये बहुत दिनों से एक सलवार सूट काट कर रखा था, मैंने सोचा आज बैठकर सिल ही डालूं, पहनने को एक और सूट हो जाएगा।
2: हाँ यार, तुम्हारा ये अच्छा है, अच्छी कला सीख रखी है तुमने, टाइम का टाइम पास हो जाए और चीज की चीज तैयार हो जाए।
4: हाँ वो तो है। और सुनाओ कहाँ निकल पड़ी थी तुम?
2: कहाँ क्या निकल पड़ी, तुम्हारे पास ही तो आई हूँ यार।
4: चलो फिर आज दिन भर बैठकर यहीं खूब बातें करें।
2: अरे नहीं यार, मैं दिन भर तो नहीं रुक पाऊंगी।
4: क्यों?
2: दरअसल मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ।
4: बोलो क्या काम है?
2: काम क्या है, वही ढपली वही राग। कल मुझे कोई लड़का फिर देखने आ रहा है।
4: अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कब आ रहा है वो?
2: वही शाम को।
4: और प्रीति तुम अब सीरियस हो जाओ हाँ, अगर लड़का सचमुच ही हर तरह से अच्छा हो तो मुझे ना मत कहना।
2: यार मेरी, तुम भी क्या बात कर रही हो, यही तो उम्र है मस्ती करने की और मजे लेने की, तो लेने दो जरा। शादी का क्या है, वो तो करनी है एक दिन।
4: कब कर लोगी तुम?
2: कर लेंगे यार।
4: देखो प्रीति, मेरी बात अलग है, मैंने तो जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया है, मगर तुम तो शादी कर लो और यूं देखने आने वाले लड़के को परेशान करना बंद कर दो।
2: तुम भी क्या बात करती हो यार मेरी।
4: क्यों?
2: अरे जब मुझे लड़के को पसंद और नापसंद करने का हक है तो मैं अपने हक का इस्तेमाल क्यों ना करूं?
4: लेकिन तुमने तो अपने इस हक को अपनी मस्ती और अपने मनोरंजन का हथियार बना रखा है।
2: अरे तो इसमें बुराई क्या है यार, मजा आता है जब कोई मुझसे शादी के ख्याली पुलाव पकाता है और उसमें अपनी नापसंदगी का मसाला डालकर उनकी बाजी पलट दिया करती हूँ मैं।
4: लेकिन कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है बेटा।
2: तुम सब छोड़ो यार, और ये बताओ तुम कल शाम को आ रही हो ना?
4: नहीं यार, कल मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है।
2: तो फिर ठीक है, मैं परसों तुमसे मिलकर पूरा आंखों देखा हाल बयान करती हूँ। ओके
4: ठीक है। आओ प्रीति आओ।
2: क्या कर रही हो?
4: कुछ नहीं, यूं ही बैठी थी। हाँ क्या तुम्हें कल लड़का देखने आया था ना, क्या हुआ उस मुंह दिखाई का?
2: अरे बात क्या बननी थी यार, छोड़ो।
4: अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कल तुम्हें मजा नहीं आया, या फिर तुम्हें उस लड़के को परेशान करने का मौका ही नहीं मिला?
2: इस बार मौका मुझे नहीं, सामने वाले उस लड़के को मिला था।
4: क्यों, ये क्या बात कर रहे हो तुम?
2: हाँ मेरी, मेरे पवन भैया, पापा और तुम बिल्कुल ठीक कहा करते थे।
4: क्या ठीक कहा करते थे? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम्हें हुआ क्या है?
2: कल मेरे साथ वो हुआ है मेरी, जो अब तक मैं दूसरों के साथ करती आई हूँ।
4: मतलब उस लड़के ने?
2: हाँ उस लड़के ने मुझे नापसंद कर दिया। मुझे ये बताओ मेरी, मुझ में उस लड़के को क्या कमी नजर आई होगी?
4: ये तो तुम्हें बिना समझाए भी सब कुछ समझ सकती हो प्रीति। आज तक तुमने दूसरों को नापसंद करके परेशान किया है, आज किसी और ने तुम्हें नापसंद करके तुम्हें परेशान कर दिया।
2: जब मैं उसे पसंद ही नहीं थी तो फिर उसने मुझसे ऐसे सवाल जवाब ही क्यों किए कि मुझे उससे उम्मीद बनने लगी थी।
4: तुम्हें उससे उम्मीद बनने लगी थी, मतलब तुमने?
2: हाँ मेरी, मैंने उसे पसंद कर लिया था मगर उसने मुझे नापसंद कर दिया। अब मुझे उन नापसंद किए गए उन लोगों के दुख का एहसास हो रहा है।
4: देखो प्रीति, पसंद नापसंद तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार करना दूसरी बात। बाइबल में लिखा है कि तुम जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी उनके साथ करना चाहिए।
2: सच है, जो जैसा जिसके साथ करता है उसके साथ भी वही होता है। मैं दूसरों की बाजियां पलटा करती थी।
4: दूसरों को परेशान करने और उनके मजे लेने वालों के जीवन में बाजियां ऐसे ही पलटा करती हैं प्रीति, इसलिए किसी को परेशान करने से पहले, किसी की बाजी पलटने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।
2: तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी।
0: पलटती बाजी, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, पूजा केलकर, विजय पंडित और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संत प्रकरण विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन में संत प्रकरण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कैथोलिक कलीसिया में संत घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। संत घोषणा की प्रक्रिया चार चरणों में होती है। विभाग उम्मीदवार की शहादत या विरोचित सद्गुणों की जांच करने में उनसे जुड़े धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्षों की मदद करता है। साथ ही उम्मीदवार के विश्वासी जीवन और उसके माध्यम से हुए चमत्कारों की जांच करता है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग के प्रीफेक्ट पोप के समक्ष आज्ञाप्ति पेश करते हैं, ताकि वे उसे सभी विश्वासियों द्वारा सम्मान दिए जाने के लिए कलीसिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। संत प्रकरण विभाग का काम है संत घोषणा के लिए उम्मीदवारों के जीवन की जांच करना, उनके स्वभाव में सुसमाचार की विशेषताओं को खोजना, ताकि हर ख्रिस्ते उन्हें भरोसेमंद और सबसे बढ़कर अनुकरणीय गवाह के रूप में देख सकें। किसी संत घोषणा के पीछे एक वफादार सामूहिक कार्य होता है जो कभी कभी दशकों तक चला जाता है। वर्तमान में संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट हैं कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो, जबकि सचिव महाधर्माध्यक्ष फाबियो फाबेने हैं। सन 1969 में संत पापा पॉल छठवें ने प्रेरित संविधान साक्रारीतुम कांग्रीगासियो के साथ दिव्य उपासना और संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना की थी और उनके बीच पौत्र संस्कारों के धम्म संघ के कामों को बांटा था। 1983 के प्रेरित संविधान दिवीनुस पेरफेक्सियोने मजिस्टेर के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषणा के कारणों की प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया और धम्म संघ की संरचना में बदलाव लाया, जिसे एक पर्यवेक्षक दिया गया जो ईश सेवकों की संत घोषणा की देखरेख करें। इसके बाद 1988 के प्रेरित संविधान पास्टर पोनुस के साथ इसका नाम बदलकर संतों के मामलों के लिए स्थापित धम्म संघ कर दिया गया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ पोप फ्रांसिस ने इसका नाम संत प्रकरण विभाग कर दिया और 2025 के जुबली के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने विभाग के अंदर नए शहीदों विश्वास के साक्ष्यों के आयोग का गठन किया, ताकि उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जा सके जिनमें दूसरे ख्रिस्त समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ख्रिस्त को मानने और उनके सुसमाचार की गवाही देने के लिए अपना खून बहाया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में बताया गया है, यह विभाग ईश सेवक की धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया की देखरेख करने, शहादत या वीरतापूर्ण सद्गुणों की जांच में विशप की मदद करने या किसी कैथोलिक विश्वासी के जीवन और चमत्कारों की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो ईश सेवक को चुना जाता है, जिसके लिए एक सच्चे विस्तृत और पक्की पौत्रता की जरूरत होती है, यानी यह आम राय कि उसका जीवन सरल ख्रिस्त सद्गुणों से भरपूर और ख्रिस्त समुदाय के लिए फायदेमंद था। 1983 में लाए गए संतों के मामलों के नए नियम ने धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया के समय को काफी कम कर दिया है। हालांकि संत घोषणा की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है। अगर ये मामला सकारात्मक हो तो मामला विभाग के सदस्यों, कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों के आम सत्र में जाता है। आखिरी फैसला पोप का होता है, जिनकी मंजूरी से प्रीफेक्ट अलग अलग मामलों को सौंपता है। संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना के बाद से इन 56 सालों के आध्यात्मिक एवं प्रेरितिक संतुलन में 2020 तक 3,300 धन्य घोषणा और 1,479 संत घोषणाएं हुए हैं। हर साल आमतौर पर हर महीने दो आम सत्र होते हैं और हर एक में तीन या चार मामलों की जांच होती है। इस तरह एक साल में 70 से 80 मामले निपटाए जाते हैं। ईश प्रजा के बीच पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए लोकप्रियता के कारण धर्म प्रांत में जांच शुरू होती है। रोम लाए जाने के बाद एक पर्यवेक्षक को पोस्टुलेटर का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि वह धर्म प्रांत में संग्रहित सबूतों का सारांश तैयार करे, जीवन की कहानी लिखे और ईश सेवक की पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए उनकी तुलनात्मक ख्याति के साथ साथ शहादत का वर्णन करे। इस स्थिति का अध्ययन ईश शास्त्रों के एक दल द्वारा किया जाता है और यदि पुराना मामला हो जिसमें उम्मीदवार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है तो इतिहासकारों के एक कमीशन द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर उनकी राय सही होती है, फाइल को विभाग के कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों द्वारा आगे की जांच के लिए जमा किया जाता है।
अगर मंजूरी मिल जाती है तो पोप ख्रिस्त सद्गुणों या शहादत अथवा ईश सेवक के जीवन के समर्पण पर आज्ञाप्ति जारी करने की मंजूरी देते हैं। इस तरह वे आदरणीय बन जाते हैं। धन्य घोषणा संत घोषित करने की दिशा में बीज का चरण है। अगर उम्मीदवार को शहीद घोषित किया जाता है तो वे तुरंत धन्य हो जाते हैं, अन्यथा उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना से वे चमत्कार को मान्यता मिलनी चाहिए। चमत्कार पर ईश शास्त्र परामर्श के बाद पोप संबंधित आज्ञाप्ति को मंजूरी देते हैं। धन्य को संत घोषित करने के लिए उन्हें दूसरे चमत्कार में असरदार प्रार्थना का श्रेय मिलना चाहिए। धन्य घोषणा और संत घोषणा एक कार्तिक विश्वासी से जुड़ा है जिसने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद पौत्रता, शहादत या अपने जीवन के समर्पण के द्वारा प्रसिद्धि पाई हो। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत प्रकरण विभाग पर संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका पलटती बाजी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने ज्ञान, धन, संपदा, रंग रूप और सुंदरता पर बहुत ही घमंड होता है। अपने आगे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। शादी के लिए लड़की देखने गए तो लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल करना पसंद कर ली। यही बात लड़की के लिए भी है। यदि शादी न करना चाहे तो लड़के में नुक्स निकाल कर खाली हाथ लड़के को वापस भेज दिया। कुछ लोगों को दूसरों का उपहास करना और उनको नीचा दिखाने में आनंद आता है। यदि आप भी लोगों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं तो इस बुरी आदत को बदल लें, क्योंकि जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। बाजी पलटने में समय नहीं लगता। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका पलटती बाजी।

0: ज्ञान ही बढ़ेगा, और वो ज्ञान तुम्हारे किस काम आएगा प्रीति?
1: क्यों भैया, क्यों किसी काम नहीं आएगा? जीवन में दर्शन का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है।
0: देखो, अगर तुम मेरी बात सुनो तो कंप्यूटर वगैरह सीख लो और कुछ सोचो, तुम्हारे काम आएगा। ये दर्शन शास्त्र वगैरह जैसे सब्जेक्ट तो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं।
1: क्या पवन भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला ज्ञान पाने और ज्ञान बढ़ाने का भी कोई विषय आउट ऑफ फैशन होता है क्या?
0: लेकिन कुछ नया करने और नया सीखने में आखिर बुराई ही क्या है प्रीति? अच्छा प्रीति, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ये तुम्हारे मनपसंद विषय पढ़कर आगे क्या करना चाहती हो?
1: देखो भैया, आपको एक बात तो मैं साफ बता दूं कि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करने वाली हूं।
0: फिर क्या करोगी तुम?
1: इतना तो तय है कि मैं नौकरी के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी।
0: तो मतलब ये कि नौकरी करने के बजाय तुम शादी करना अधिक पसंद करोगी?
1: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
0: अरे जब तुम्हें शादी ही करना है तो फिर ये आगे पढ़ने का झंझट क्यों?
1: तो आगे और पढ़ने में बुराई भी क्या है?
0: मेरा मतलब है कि जब तुम्हें नौकरी वगैरह नहीं करना है तो सीधे अपने किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लो।
1: समय आने पर वो भी कर लूंगी भैया।
0: मगर मैंने तो अभी तक सिर्फ यही देखा है प्रीति, कि जब भी कोई लड़का तुम्हें देखने आता है तो सारी रस्म पूरी होने के बाद पता चलता है कि तुमने लड़के को तो नापसंद कर दिया है।
1: पवन भैया, अब अगर लड़का नापसंद होगा तो नापसंद ही तो किया जाएगा ना।
2: बेटी, अगर इस दुनिया में तुम लोगों में कमी ढूंढने जाओगी तो तुम्हें सभी लोगों में कोई ना कोई तो कमी मिल ही जाएगी।
1: अब कमी है या होगी तो मिलेगी ही पापा।
0: सुना पापा आपने, आपकी लड़ी का क्या कहना है?
2: देखो बेटी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी या गलती ना हो।
1: कोई तो ऐसा होगा ना पापा।
2: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, पूरा हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो।
0: पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर तुम दूसरों की गलतियां ढूंढती रहती हो। क्या तुम में कोई गलती नहीं है? क्या तुम एकदम परफेक्ट हो?
2: पवन बिल्कुल सही कह रहा है बेटी, हमें दूसरों में कमी या गलती देखने की बजाय पहले अपने आप में ही हमें इन अवगुणों को खोजना चाहिए, उससे दूर कर फिर औरों में हमें कमी ढूंढना चाहिए।
1: मगर शादी करके मुझे जीवन भर उसके साथ रहना है, तो क्या मैं अपनी पसंद का ध्यान भी ना रखूं?
2: वो भी तुम्हें एक सीमा तक ही रखना चाहिए बेटी, और फिर आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करती? मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो और उसमें मेरी मदद करो बेटी।
3: प्रीति, आओ आओ।
1: और क्या कर रही हो?
3: अरे, ये बहुत दिनों से एक सलवार सूट काट कर रखा था, मैंने सोचा आज बैठकर सिल ही डालूं, पहनने को एक और सूट हो जाएगा।
1: हाँ यार, तुम्हारा ये अच्छा है, अच्छी कला सीख रखी है तुमने। टाइम का टाइम पास हो जाए और चीज की चीज तैयार हो जाए।
3: हाँ, वो तो है। और सुनाओ, कहाँ निकल पड़ी थी तुम?
1: कहाँ क्या निकल पड़ी, तुम्हारे पास ही तो आई हूँ यार।
3: चलो फिर, आज दिन भर बैठकर यहीं खूब बातें करेंगे।
1: अरे नहीं यार, मैं दिन भर तो नहीं रुक पाऊंगी।
3: क्यों,
1: दरअसल मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ।
3: बोलो क्या काम है?
1: काम क्या है? वही ढपली वही राग। कल मुझे कोई लड़का फिर देखने आ रहा है।
3: अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कब आ रहा है वो?
1: वही शाम को।
3: और प्रीति, तुम अब सीरियस हो जाओ। हाँ, अगर लड़का सचमुच ही हर तरह से अच्छा हो तो मुझे ना मत कहना।
1: यार मेरी, तुम भी क्या बात कर रही हो, यही तो उम्र है मस्ती करने की और मजे लेने की, तो लेने दो जरा। शादी का क्या है, वो तो करनी है एक दिन।
3: कब कर लोगी तुम?
1: कर लेंगे यार।
3: देखो प्रीति, मेरी बात अलग है, मैंने तो जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया है, मगर तुम तो शादी कर लो और यूं देखने आने वाले लड़के को परेशान करना बंद कर दो।
1: तुम भी क्या बात करती हो यार मेरी।
3: क्यों,
1: अरे जब मुझे लड़के को पसंद और नापसंद करने का हक है, तो मैं अपने हक का इस्तेमाल क्यों ना करूं?
3: लेकिन तुमने तो अपने इस हक को अपनी मस्ती और अपने मनोरंजन का हथियार बना रखा है।
1: अरे तो इसमें बुराई क्या है यार? मजा आता है जब कोई मुझसे शादी के ख्याली पुलाव पकाता है और उसमें अपनी नापसंदगी का मसाला डालकर उनकी बाजी पलट दिया करती हूँ मैं।
3: लेकिन कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है बेटा।
1: तुम सब छोड़ो यार, और ये बताओ, तुम कल शाम को आ रही हो ना?
3: नहीं यार, कल मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है।
1: तो फिर ठीक है, मैं परसों तुमसे मिलकर पूरा आंखों देखा हाल बयान करती हूँ। ओके
3: ठीक है।

0: आओ प्रीति आओ।
1: क्या कर रही हो?
0: कुछ नहीं, यूं ही बैठी थी। हाँ, क्या तुम्हें कल लड़का देखने आया था ना, क्या हुआ उस मुंह दिखाई का?
1: अरे बात क्या बननी थी यार, छोड़ो।
0: अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कल तुम्हें मजा नहीं आया, या फिर तुम्हें उस लड़के को परेशान करने का मौका ही नहीं मिला?
1: इस बार मौका मुझे नहीं, सामने वाली उस लड़की को मिला था।
0: क्यों, ये क्या बात कर रहे हो तुम?
1: हाँ मेरी, मेरे पवन भैया, पापा और तुम बिल्कुल ठीक कहा करते थे। अरे
0: क्या ठीक कहा करते थे? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम्हें हुआ क्या है?
1: कल मेरे साथ वो हुआ है मेरी, जो अब तक मैं दूसरों के साथ करती आई हूँ।
0: मतलब उस लड़के ने?
1: हाँ, उस लड़के ने मुझे नापसंद कर दिया। मुझे ये बताओ मेरी, मुझ में उस लड़के को क्या कमी नजर आई होगी?
0: ये तो तुम्हें बिना समझाए भी सब कुछ समझ सकती हो प्रीति। आज तक तुमने दूसरों को नापसंद करके परेशान किया है, आज किसी और ने तुम्हें नापसंद करके तुम्हें परेशान कर दिया।
1: जब मैं उसे पसंद ही नहीं थी, तो फिर उसने मुझसे ऐसे सवाल जवाब ही क्यों किए कि मुझे उससे उम्मीद बनने लगी थी।
0: तुम्हें उससे उम्मीद बनने लगी थी? मतलब
1: हाँ
0: तुमने?
1: मेरी, मैंने उसे पसंद कर लिया था, मगर उसने मुझे नापसंद कर दिया। अब मुझे उन नापसंद किए गए उन लोगों के दुख का एहसास हो रहा है।
0: देखो प्रीति, पसंद नापसंद तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार करना दूसरी बात। बाइबल में लिखा है कि तुम जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी उनके साथ करना चाहिए।
1: सच है, जो जैसा जिसके साथ करता है उसके साथ भी वही होता है। मैं दूसरों की बाजियां पलटा करती थी।
0: दूसरों को परेशान करने और उनके मजे लेने वालों के जीवन में बाजियां ऐसे ही पलटा करती हैं प्रीति। इसलिए किसी को परेशान करने से पहले, किसी की बाजी पलटने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।
1: तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी।
2: पलटती बाजी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, पूजा केलकर, विजय पंडित और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।